0: के लोग न दृष्टे कोए,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: दया कीर्तन मिटे कोए,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब कट दिसके ओ कर

0: देखाते उदरल श्रेष्ठ
1: धन कमल जाके अनूप
0: दर्शन सुंदर हर रूप
1: सेवा सेवक परवान
0: अंतर जामी परक प्रदान।

लेख जानन लेख लेख धर्म बिचारे गावन तुदनौ ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनौ इंद्र इंद्र आसन बैठे देवते अंदर नाले गावन तुदनौ सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनौ साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे।

पई। पुन रात का काटा सीसा श्री असकेत जगत के ईसा पुह पन बृष्ट गगन ते पही। सब हिने आन बधाई दई धन धन लोगन के राजा। दुहटन दाह गरीब निवाजा।

इत्यावपै संबद सतरह सहसपनिज्य अर्धसहसफुणतीन कहिज्य पादरव सुदी अष्टमी रव वारा तीरह तद्रव ग्रंथ सुधारा

संगारो प्रथम तरह भगवत कव त्याना बहुर करो कविता विद नाना कृष्ण जथा मात चरित्र उचारो चूक हो कबलिहो सुधारो

पई। जो है कथा सुने अर गावे दुख पाप तेह निकुटो नावे। विष्णु भक्त की है फल होई आद ब्याद शिवै सकै न कोई। संबद सतरह सहस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दामन।

हरा। साध असाध जानो नहीं बाद, सुबाद विवाद, ग्रंथ सकल पूर्ण कियो, भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौने दयावे ताय सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय।

बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह रिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताए सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दार दा ध्यान तरके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी। आप जिया ने कृपा रहमत की है अमृत वेले तो सोने तख्तां ते प्रकाश मनुके दर्शन दीदार बख्शे हैं। आप जिया का कोटान कोट धनवाद शुकराना है। इस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जिया के पावन स्वरूप दे सुखासन की सेवा हुई है। सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक की खिमा बख्शना। आप जी दे भाणे विच दिहाड़ा सुखां नाल बतीत होया ही रहण। आप दे भाणे विच बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपनियां सेजां ते विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेले दे जग ने दर्शन बख्श के निहाल करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

तुम सभी तेरे निरालम जानत वेद भेदर आलम निरंकार निर्विकार निलंबो आद निरनाद असंभ ता का मूढ़ जानत भेदा जापो प्रेम ना पावत वेदा ताको कृपान अनुमानत मा मूढ़ कछ भेद न जानत मा देव को कह सदा सिंह निरंकार का चिंत न पीव आप अपनी बुद है जेति वर्णत बिन बिंदु है देते तुमरा लखा न जाय पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक कह रूप अनुस्वरूप रंग भयो रावे की रूपा अंड जे रसे दजगिंदी उद्भुज खान बोरज देने कहु फूल राजा बैठा कहु सिमट पोस कर गेटा सगले सिरत गाय चंपा जुगा सरो सोम्ब अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख समरो दुष्ट जिथे उठ दुपाता सकल मलेच करो नगाता जय तू तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत है मरे पुरख जवन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब डारे जो कल को एक बार ते यता के काल निकट न रक्षा होय ताय सब काला दुष्ट अरिष्ट तत्काला कृपा दृष्टन जाय नियरियो ताके ताप तनक मोरियो रे सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा जैसे न कोई।

संग्रह पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई बना त्याऊ जो वर चाम सो तुम दे पाऊं सेवक सी कमारे तारी है चुन चुन सतर मारे मारी है आप हाथे मुझे वरिय मरण काल का त्रास निवरिय हो जो सदा हमारे बच्चा श्री अस तू जो करियो अच्छा राख ले मोरा कन्हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंध टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश घंटा काल पाए ब्रह्म अवतरा काल पाए शिव जी अवतरा काल पाए गर्व संत प्रकाशा सकल काल का क्या तमाशा जवन काल जोगी शिव की वेद राज ब्रह्मा जो थी जवन काल सब लोग सवार नमस्कार है ताय मारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत छन जायो आदंते गए तारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी कुमारी सकल प्रजा जनाब सवारी शिव गुण को शिव गुण सुख दियो सतरन को परमो बज गयो काट काट के अंदर के जानत भले बुरे के पीर बछान चीटी ते गुंजा स्तुला सब पर कृपा दृढ़ कर भूला संतन दुख पाए ते दुखे सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर बछाने काट काट के पटपट की जाने जावत करक करा कर तारा प्रजा तप तप देह अपारा जवा करत गए दो कंबू तुम में मिल दे दर्शन जीते बदन सिर सतारे आप अपनी बोध उचारे तुम सभी ते रहत निरालम जानत भेद भेदर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंब ता का मूड जड़ भेदा जाको भेव न पाव द्वेदा ताको कृपा अनुमानत मां मूड कज भेद न जानत मां देव को कह सदा सिंह निरंकार का चिन्हित न पीव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णन पिन बिंदु है देते तुमरा लखा न जाय पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक कह रूप अनुस्वरूप रंग भयो रावे की भूपा अंड जे रसे दज गिंदी उद्भुज खान बोरज देने कहूं फूल राजा बैठा कहूं सिमट पोस करे गेटा सगली सिरत गाय चंपा आ जुगा सरो सोंब अब रक्षा मेरी तुम करो सी गुबार सिख समरो दुष्ट जिथे उठ दुपाता सकल मलेच करो नगाता जय स्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब डारे जो कल कोई बार ते यता के कारण घटने रक्षा होय ताय सब काला दुष्ट अरिष्ट तत्काला कृपा दृष्टन जाय नियरियो ताके ताप तनक मोरियो रे सीत कर्मो सब होई दुष्ट छा जैसे न कोई।

सही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपाई हमरे ग्रोहा ते रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन बन रहे हमारा अपना जान करो द्वारा हमरे दूर से तुम गाओ आभा दे मुई बचाओ सुखी बसे मोरो परिवार सेवक सिख सबे करता राम मोर अच्छा निज करते करिए सब बैरन को आसंग्रिय पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई बना त्याऊ जो वर चाम सो तुम दे पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सतर मारे मारिय आभा दे मुझे वरिय मरण काल का त्रास निवरिय हो जो सदा हमारे बच्चा श्री तुझे करियो रक्षा राख ले मोरा कन्हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंज टंगे अंता तुम हो पुरी चतुर्दश घंटा काल पाए ब्रह्म अवतरा काल पाए शिव जी अवतरा काल पाए गर्व सन प्रकाशा सकल काल का ज्ञात मासा जवन काल जोगी शिव की वेद राज ब्रह्मा ज्योति हो जवन काल सब लोग सवार नमस्कार है ताय मारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत छन जायो आदंते गए तारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिशी कुमारी सकल प्रजा जनाब सवारी शिव गुण को शिव गुण सुख दियो सतरन को पलमो बज गयो काट कट के अंदर के जानत भले बुरे के पेर बछा चीटी ते कुंजा स्तुला सब पर कृपा दृढ़ कर भूला संतन दुख पाए ते दुखे सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर बजाने कट कट के पटपट की जाने जावत करक करा कर तारा प्रजा तरप तप दे अपारा जवा करत गए दो कंबू तुम में मिल दे दर्शन मु जीते बदन सिर सब तारे आप अपनी बोध उचारे तुम सभी ते रहत ने आलम जानत भेद भेद आलम निरंकार निर्विकार निलंब आद अनिल अनाद असंब ता का मूड जड़ भेदा जाको पेव ना पावत वेदा का को कृपा अनुमानत मां मूड कज भेद न जानत मां देव को कह सदा सिंह निरंकार अवरक्षा मेरी तुम करो सी गुबार सिख समरो दुष्ट जिथे उठा सकल मलेज करो नाता जय तू तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख मरे पुरख जवन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब डारे जो कल कोई गुबार दे रक्षा हो सब काला दुष्ट अरिष्ट तत्काला कृपा दृष्टन जाय नियो ताके ताप तनक मोरियो रे सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा जैसे न कोई।

सत साई दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरे ग्रोहा ते रक्षा पूर्ण होए जित की चाता चरणन बन रहे हमारा अपना जान करो द्वारा हमरे दूर सबे तुम गाओ आभा दे मोय बचाओ सुखी बसे मोरू परवारा सेवक सिख सबे करता राम मोर अच्छा निज करते करिए सब वैरन को संग्रिय पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई बना के आऊं जो वर चाहूं सो तुम दे पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सतर मारे मारिया आभा दे मुझे वरिय मरण काल का त्रास निवरिय हो जो सदा हमारे बच्चा श्रिय तुझे करियो रक्षा राख ले मोरा कन्हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंधन के अंता तुम हो पुरी चतुर्दश घंटा काल पाए ब्रह्म अवतारा काल पाए शिव जी अवतारा काल पाए गर्भ सन प्रकाश सकल काल का ज्ञात तमाशा जवन काल जोगी शिव की वेद राज ब्रह्मा ज्योति हो जवन काल सब लोग सवार नमस्कार है ताय मारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै दक्षण जायो आद अंत गए अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिशी कुमारी सकल प्रजा जिनाब सवारी शिव गुण को शिव गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद गयो काट कट के अंदर के जान भले बुरे के पेर चीटी ते पर कृपा दृष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखे सुख पाए साधन के सुखी एक एक पीर बजाने कट कट के पटपट की जाने जावत करक करा कर तारा प्रजा तरप तप देह अपारा जवा करत गए धो कम्बू तुम में मिल दे दर्शमु जेते बदन सिर सब तारे आप अपनी बोध उचारे तुम सभी ते रहत निरालम जानत भेद पेदर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ता का मूड जात भेदा जाको पेम न पावत वेदा ताको कृपा अनुमानत मां मूड कज भेद न जानत महादेव को कह सदा सिंह निरंकार का चिन्ह इतना पीव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णन पिन बिंदु है देते तुमरा लखाना जाय पसारा कह विधि सजा प्रथम संसारा एक कह रूप अनुस्वरूप रंग भयो रावे की भूपा अंड जेर से दज गिंदी उत्पुज खान बोरज देने कहू फूल राजा बैठा कहू सिमट पोस कर गेटा सगली सृत गाय चंप आ जुगा सरो सोम्ब अब रक्षा मेरी तुम करो सी गुबार सिख समरो दुष्ट जिथे उठ पाता सकल मलेच करो नाता जय तू तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब डारे जो कल कोई गुवार दे के कारण घटने रक्षा हो सब काला दुष्ट अरिष्ट तत्काला कृपा दृष्टन जाय नियरियो ताके ताप तनक मोरियो रे सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा जैसे न कोई।

सदा हमारे पच्छा श्री हर जो करो रक्षा राख लिहो मुहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए सुखु अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार सही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मुँह बद कियो कड़ कड़ के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन की सुखी एक एक की पीर पछान कड़ कड़ के पड़ पड़ की जान जब उद करख करा करतारा प्रजा तरत तब दिह अपारा जब आ करख कर तुहो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्री सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रह नरालम जानत बीत भेद अर आलम निरंकार निर्भकांड लंब आद अनिल अनाद असम।

सुमट भयो शंकर अकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप सजम भव अवर अच्छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दोष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तव सरणी परे तिनके दोष दुखत हवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारी तिनके तुम संकट सबटारी जो कल कोई कबार ते आए हैं ताकि काल निकट न आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तकाला कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो ताकि ताव तन कमो हर हो रिद्ध सिद्ध करमो सब होई दुष्ट शाह श्वस के न कोई

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय

प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रदा, प्रभु को सिमरे से बे महताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरंते लागे जन आप दयाला, नानक जन की बंगे रवाला, प्रभु को सिमरे से पर उपकारी, प्रभु को सिमरे सिमरह तिन सदबलहार, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरह तिन सुख बेहावा, प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरह तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरह बसह तिन बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरा भाग, प्रभु गए सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु गए सिमरन कबू ना जूरे, प्रभु गए सिमरन हर गुण बाने, प्रभु गए सिमरन सहज समाने, प्रभु गए सिमरन नेचल आसन, प्रभु गए सिमरन कमल विगासन, प्रभु गए सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत ना पार,

रत्न शरीर घटाए होमे कर राती बर्त नेम कराए बहुभांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नाउ खंड प्रथमी फिराचर जीवा महा उदास पीसर थी बाय अगर माय होमद प्राण कनक सब है भरपूम दान न्यवली कर्म करे बवासन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमकर शरीर कटावे तापी होमे मैल न जावे हर के नाम संसर्ग शनाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर देश उठाए गर्भ गुमान न मंते हटाए सोच करै दिन सर रात मन की मैल न तंते जात

पात जाए अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त्रकार मिखोट गवावे, एक पीना दे दस भी हर ले, तो मूढ़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर से नाही चारा, ठाकुर की जय सदर्म सकारा। जागे मन लागा ब्रह्म मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा। जिसन ब्रह्म हुकम मनाया, सर्व थोक नानक दिन पाया। आगंत शाप नी दे रास, घात पीत बरते अनंत उलास। अपनी अमान कस बहुर चालिया, ज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीता भी खोबे, बोर सुखा विश्वास न होवे। जिसकी बस आज्ञा राखे, प्रभु की आज्ञा मानै माथै। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनक भांत माया के हेत, सर्व होवत जान अनेत। बिरकी छाया सुरंग लाभ, अबिन से मन पछतावे। जो दिसे सो चालन हार, लपट रहो ते अंधार बटाओ। से जो लावे ने दागो हाथ न आवे, केहे मन हर गे नाम की बिरी सुदाई। कर कृपा नानक आप लय लाई, मिथ्या तन धन गुटा में सबाया। मिथ्या होबे ममता माया, मिथ्या राज बन धन माल। मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती आसव वस्त्रा। मिथ्या रंग संग माया बेखस्ता, मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान। मिथ्या पुष्प प्रकृत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण। नानक जब जब जीवे हर के चरण। मिथ्या शरण पर निंदा सुनह, मिथ्या हस्त पर दर को हिरे। मिथ्या नेत्र बेखत पार तर उपाद, मिथ्या रसना भोजन स्वाद। मिथ्या चरण पर विकार गोतावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा। बिन बुझे मिथ्या सब पे सबल दे, नानक हर हर नाम लय। बिरती सागत की आरजा, साज मना गए होब सुचा। बिरथा नाम बिना दर अंध, मुखा बतागे दुर्गंध। बेन सिमरन दिन रैन, बिरथा बेहाय। मेघ बना जो खेती जाए, गोविंद भजन मिन बृथे सब काम। जो किरपन के निराहर धाम, तन तन ते जन जेकट बसियो हर नाहू। नानक दा के बर बर जाओ, रह तबर का शबर कमावत। माने प्रीत मुखो गंड लावत, जानन हार प्रभु प्रवीन। बाहर भेख न काहू भीन, अमर विदेशे आव न करे आवत। जावत जन्म मरा, जिसके अंदर बसे निरंकार। तिसकी सीख तरा संसार, जो तुम भाने तन प्रभ जाता। नानक उन जन चरण फराता, करो बेनती बार ब्रह्म सब जानै। अपना किया आपे माने, आपे आप आव करतन बेरा। किसे दूर जनावत, किसे बुझावत नेरा। उपाव सियानम सगल ते रहत, सब कुछ जाने आत्म की रहत। जिस भावित सिलाई लड़दाए, धान धरंधर या समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी सलोक। काम क्रोध अर लोभ मोह, बिनस जाए अहमेव। नानक प्रभु शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी। जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे। जय प्रसाद सुगंध तन लावे, तिसको सिमरत परम गत पावे। जिसको जय प्रसाद बसे सुख मंदर, तसे ध्याए सदा मन अंदर। जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आड़ बहर सिमरोत सरचना। जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा ध्याई ध्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, तसे त्याग तबर लुभावे। जय प्रसाद सुख सेज सोई, जय मना आठ बहर ताका जस गावी जा। जय प्रसाद सब गौ माने, मुख ताको जस रसन बखाने। जय प्रसाद तेरु रहता धर्मन, सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जब दुर्गे मान पावे, नानक पथ सेती कर जावे। जय प्रसाद आरो कंचन देहि, लिबलावत सराम सनेहि। जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावे हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल क्षेत्र ढाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताकै। जय प्रसाद तुझको ना पहुँचे, मन सासा सिमरो प्रभु ऊचे। जय प्रसाद भाई दुर्लभ दे, नानक ताकि भगत करे हे। जय प्रसाद आ भुखन पहरिजै, मन ते सिमरत क्यों आल सकीजै। जय प्रसाद आसव हास सबारी, मन तिस प्रभु को गबहू ना बिसारी। जय प्रसाद बाग मिलख तना राख, पुर पुरोय प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बानत बनाई, उठत बैठ सा तिसे त्याई। तिसे त्याई जो एक अलख्या, इहां उहां नानक तेरी रख्या है। जय प्रसाद करे पुन बहुदान, मनाठ पैर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद हुआ चार व्यवहारी, तिस प्रभु को सा सा चितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सोब्रम सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी नेकी जात, सोब्रम सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पतरा है, गुरु प्रसाद नानक जस का है। जय प्रसाद सुने करनाद, जय प्रसाद वेखे बिस्माद। जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना।
निप्रसाद हस्त कर चले निप्रसाद संपूर्ण फले निप्रसाद परमगत पावे निप्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागो गुरप्रसाद नानक बन जागो निप्रसाद तुम प्रगट संसार तिस ब्रह्म को मूला मनो विसार निप्रसाद तेरा प्रताप रेमन मूर्त तक हो जाप निप्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे निप्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तास्यो राज निप्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाउ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा दे होए प्रकाश प्रभु दया थे कमल विकास प्रभ सुप्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया थे मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभु तेरी माया बगशुना किनु लया जित जित लाभो तित लगे हर नाथ नान गिन कै कशुना हाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुनमिता नानक बनवंता साध जना की आचार्य कथा अष्टपदी साधक संग मुख उज्जल होत साध संग माल सगली खोत साधक संग भेटे अभिमान साधक संग प्रगटे सुज्ञान साधक संग बजे प्रभ नेरा साध संग सबोत नवेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक पर जतन साध की महिमा बरने कौन पुराने नानक साध की शोभा ब्रह्म है समानी साधक संग अगोचर मिलाय साधक संग सदा पर भुलाय साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग सबकी रेन साध संग होए सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतु हंता भय साध संग असत मन भावे साधक संग माया ते बहन साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न साध संग दुश्मन सा मीत साधु गय संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साधक संग ना भींगा पैर साधक संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग नाही हों ताप साधक संग तजे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु आई साधक संग ना कभी हों ताप है साधक संग सदा सुख पावे साध संग बस अगोचर लह साधु कह संग आ जा रो सह साधक संग बसे थान उचै साधु कह संग बहल पहुचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कह कुर्बान साधक संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कह संग सो धन पावे जिस तनते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कह संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गाय साधक संग सर्वथान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कशगाल दर्शन भेट तो होत निहाल साधक संग अलूकथ हराया साधक संग नरक पर हराया साधक संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछरा तरमेला जो छह सोई पर पावे साधक संग ना व्रत

ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्प को शोक। ब्रह्म ज्ञानी का दृश्य समान जैसे राज रंगु लागे तुल्पवान। ब्रह्म ज्ञानी का तीर जो बसदा गौ खोदे गौ चंदन लेप। ब्रह्म

और धाराए जो अंतरनाम सर्व पिख भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक अपरस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परत्रय रूप न पिख नेत्र साधु की टहल संसंगेत करना सुने काहू कि निंदा सप्ते जाने आप इसको मंदा गुरु प्रसाद विख्या प्रहरा मन की वासना मन ते टरा इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानकूट भदे को ऐसा अपरस वैष्णव सहोज सुप्रसन्न विषण की माया ते हुए भिन्न कर्म करतो बहने कर्म तिस वैष्णव का निर्मल धर्म का उफल की छा नहीं बादशाह केवल भगत कीर्तन संगराचा मंत्र अंतर सिमरण गोपाल सब उपरोध होबत कृपाल आप लड़े अवरे नाम जपावे नानक वैष्णव पर मुगत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मंते बिंसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मन को वे तस भगवती की मत उत्तम हो वाय भगवंत की टहल कराए नित नीत मंथन हर वाय विषण भरी हर के चरण हृदय वसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आता मैं शुद्ध है राम नाम सारस पीवा उस पंडित के उपदेश जग जीवा हर की कथा हृदय बसाव है सो पंडित फिर जो न आवे वेद प्राण सिमरत बुझे मूल सुख में जाने स्थूल चाहवरना को दे उपदेश नान कुछ पंडित को सदा आदेश।

बगले अष्टपदी जिसके अंदर राज अभिमान सो नरक पाती अभिस्मान जो जाने में जो बलवंत सो विष्टा कहा जनता को कर्म मंत कहा वह जन्म मरे बो जो प्रभाव है धन भूमगा जो करे गुमान सो मूर्खंदा अज्ञान कर कृपा सका हृदय गरीबी बसावे नानक यहां मुक्ति आ गए सुख पावे तरमंता कर कर बावे त्रिन समान का संग ना जावे वो लश्कर मान खुपर कर आस पल भीतरता का हो विनाश सब ते आप जाने बलवंत खन में हो जाए बस मंद किसे न बदे आप अहंकारी धर्मराय करे खुवारी गुरप्रसाद जागा मिटे मान सोच नानक दरगे परवान कूट कर्म करे हों तारे शर्म पावे सगले बिरथारे आनुक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिर अवतार आनुक जतन कर आत्म नहीं द्रवा हर दुर्गे को कैसे गवाह आप इसको जो भला कहा आवे तसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मन सोए जब लग जाने मौजूद आकाश होए तब इसको सुनाही तब इसको सुख नाही कोए जब जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी भी तब लग नेचर लाही चीत जब लग मो मगन संग माए तब लग धर्म राय शेष जाए पर कृपाते बंधन टूटे गुरुप्रसाद नानक हो छूटा है सहज घटे लक उड़ता बितरतना आवे माया पाछ पावे अनुक भोग बिख्या के घर नेत्र बतावे घप घप मरे बिना संतोख नहीं कऊ राजे सबन मनोरथ ब्रथे सब गाजे नाम रंग सर्व सुखो।

अनंत कटकट व्याप रहया भगवंत, तरणमय आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल, मंथन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पाणी वै संतर माहे, चार गुण दसे समाहे, दसते भिन्न को ठाओ, गुर प्रसाद नान सुख पाओ, वेद ब्राण सिमृत में देख, शशि अर सूर अनख्यात्र में एक, बाणी प्रभु की सबको बोला है, आप अडोल न कबू हूँ डुला है, सर्व करा कर खेला खेल, मोना भाई गुण अमोर, सर्वजोत में जाकी जो

स्वभजन सर्व्यापी राम संग रचन जिन जाता तस्किय राहत सद भजन साधु सब गहत जो जो ऐसोई सुख माने करन कराम नहार प्रभु जाने अंदर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख समोही आप सत किया सब साते तिस प्रभु ते सगरी तपात तिस भावत करे विस्तार तिस भावत एक अंकार अनकरा लखी न जाय जिस भावत सदाए मिलाए कब निकट कम न कही है दूरा पिया बा भरपूर अंतर गात साव जनाए नानत जना बुझाए सर्वभूता प्रतारा सर्वनैना पिखणहारा सगल समग्री जाका तन आपन जस आप ही सुना बजाने खेल बनाया आज्ञाकारी की नीवाया सबके मत अलिप्त हो रहा है जो किस गहना सो आप एक आज्ञा वे आगे जाए नानक जा पावे तला समाए इस सो ना ही बुरा उराय कहो गिने कुछ करा आप अलाकूर्त करदूता तने किया पे जाने अपने जी किया साज तारी सब साज ओत ओत अपन संग्रह ताकि कदम कहे ना जाए तुसरे तो सोची पाए तिसका किया सप्रमान गुरप्रसाद नानक हो जान जो जाने तो सदा सुख होए आप मिलाए लाए प्रभु सोए ओतरमंत कुलवंत पतमंत जीवन मुक्त सिरदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जग तराया जन आवन का यह स्वभाव जन

गुण गोविंद अमृत रस पीयो चेत चित बो नारायण एक एक रूप जागे रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर ना बारंबार नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल रतन सुनत कमाप तो उदार आप तरे लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत बाजे सुन सुन अंत कृ प्रभाजे प्रकटे गोपाल मात के माथे नान उदरे दिन के साथे शरण जोग सुन सरणी आये कर कृपा प्रभ आ मिलाये मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम सात संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुई सेवा की सेवा जंजाल बिगाड़ तेरा राम राम राम नाम सुदर्शना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक रवि खेव मारे प्रभु की सतगुरु संत में सावधान एकागर चीत सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम जैसे मन बसे सोत निदान सर्विच्छा दागी पूर्ण होए प्रदान पुरख प्रकट सब लोए सबते ऊज पाए आसान बाहर न होवे आमन जान हरतन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रतना मनिद बुद्ध ज्ञान सर्वदय सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सबके मध्य सकल देवदा सुंदर चतुर तत् कविता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तेस जान का मुख पने गुरु नानक नाम वचन मन सुने यो निदान जपै मन कोए सब जुग में तागिगत हुए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट पराध सांसंग मिटे संत कृपाते जमते छुटाए जाके मस्त करम ब्र पाए सा सर नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत ते जन आवे हर प्रभु चीत जन्म मरण ताका दुख निवारा दो लभ दे तत्काल उदार निर्मल शोभा मन ताकी बानी एक नाम मन माने नमाए सवानी दूर रूप से पर प्रसाद लाभ निर्मल ताके कर्म सब ते ऊज ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख बनी।

कर, गावे को साज करे तन खेह, गावे को जी लै फिर देह, गावे को जापह दिसे दूर, गावे को वेखै हाजरा हदूर, कथना कथी ना आवे तोट, काथ काथ कथी कोटी कोट कोट, कोट।

करे। सुनया सिद्ध पीर सुर नाथ, सुनया तरत तबले आकाश, सुनया दीप लो पाताल, सुनया पोहे न

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेच मल भख खाहे असंख निंदक सिर करहे पार नानक

सो दर के हा सो कर के हा जित बै सर्व संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वामन हारे केते राग परी सिंह कहियन केते गावन हारे गावे हे तुहनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित गुप्त लेख जान लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावे हे इंद इदासन बैठे देवते अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा माछ पयाले गावन रत्नी उपाय तेरे अड़सर तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खाणी चारे गावे खंड।

अनेक अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चाया सच्चा दरबार तथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पावे निशान काचप काई उथे पाए नानक गया जाप पै जाए धर्म खान काए हो धर्म ज्ञान खान काख कर्म

जात पहार तीज सुनियार अहरन मात वेद हथियार पाओखला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टहल करिय शब्द सटी टकसाल

शोक है, कर्म है, परम है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रजंग प्रयाछंद,

अनुभूते अंग अभंगत में ते पार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपहन काम आत दुत प्रचांड मित गाते अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा परनाडय अंडर भाडय चारी शांत वय प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे पारे हरियंग करियंग निनामे कामे पजांग प्रयाशंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले

जन्मं अजाय नचित्तराय न मित्तराय परे हैं पवित्तराय परथी से अदि से अदृश से अकृत से भगवती शांत व प्रसाद कहते के अछज देसे के अपेज पेसे के अगांज कर में के अपांज पर में के अपेज लोक कै के अदित शोक कै के बतहूत वर्ण है के विभूत कर्ण है के राजं प्रभा है के धर्मं तुझा है के अशोक वर्ण के सर्वा भरण के जगतं कृति है के शत्रं शत्री है के ब्रह्मं स्वरूपे के अणपहनूपे

राज केसर बत्र सुख है केसर बत्र पुख है केसर बत्र तराने केसर बत्र पराने केसर बत्र देश है केसर बत्र पेस है केसर बत्र मान्य दैवंग प्रधान्य केसर बत्र जाप्य केसर बत्र थाप्य

जय कर कीन है। अनेकल तरंग है, अभेद है, अभंग है, हरि जोल निवाज है, गणि मूल खिराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सुजुगत सुधा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी रूप है, समाहत विराज है, सदा सर्वसाज है।

भगवती शांत वे प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशल सलाम है संभातल कलाम है के सहम दिमाग है।

मितो सुवास है, के अजब स्वरूप है, के मितो विभूत है, के मितो पसा है, के आतंग प्रवाह है, के अचलंग नांग है, के मितो अपांग है, मद परशांत व प्रसाद मुन मान प्रणाम गुण गान मुदाम हर नर अगंज हर नर पर पांज

त्रिचित है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृतांकृत है, अमृतामृत है, अजबाकृत है, अमृतामृत है, नारनायक है, खलकायक है,

विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांग बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री शांत अजय अलय अपह अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपाख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मं अपर्मं अगंजे लेखे प्रजांग प्रयाशंद नमः तर प्रणामे संबह तर प्रणासे अगंजल नामे संबह तोलने वासे निरकामं बेपुहते संबह तर स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं बेपुहते

पूजन धायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

चाहु सुखी बसे मोर परिवार सेवक सिख सब करता रो रक्षा निज कर दे करिए सब बैर को आ संगरिए।

है। हो जो जाकी एक बार चाव पई को कह चाव पई संबद सत्रह सहसपणि जय अर्ध सहसपण तीन कहि जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवार तीर तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

सुहावं सबदो सुहावं सदा सोहिलां सात गुरु सुनाया इहो तिनकै मन वसया जिन तुरहु लिखियाया एक फिरे कनेरे करहे गल्ला गली किने न पाया कहे नानक सबद सोहिला सत गुरु सुनाया।

नासमानी पीवह अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावहु एह सच्ची बाणी सदगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी त कच्ची सदगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख बखाणी।

वै मुक्त शब्द मानव साय गुरुमुख जिसनो आप करे सो हो वह किस स्यो लिवलाय कह नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए।

ये श्रवण हो मेरे हो सात्यय सुनना नो पठाए सात्यय सुनना नो पठाए श्री लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस सुमाणी सच अलाखे विडाणी ताकि गत कहे न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो बहु सात्यय सुनना नो पठाए

प्रसन्न कर लै, जे तू अपने गुरु नू प्रसन्न कर लै, जे तू अपने गुरु नू खुश कर लै, तेरे उत्ते बहुत सारा रूप चढ़ जाएगा। तेरा जेड़ा ओरा है वो बड़ा ताकतवर हो जाएगा, तेरी विल पावर स्ट्रोंग हो जाएगी, तेनू वेखण वाला कहेगा भी बात बन गई है। पर किवें सतगुर अपना मनाए लै, सतगुरु रुसिया होया नहीं जिन्हू मनाना है, भाव सतगुरु नू प्रसन्न कर लै। ते साध संगत जी, गुरु प्रसन्न किवें हुंदा है? सतगुरु जी ने गुरबाणी विच उहदा वल दस्या है।

प्रसन्न करने लई सतगुरु कोल ही जाना है, होर किसे कोल नहीं जाना। दूजा ना ही थाओ, कोई होर जगह नहीं है, कोई होर व्यक्ति नहीं है, बस सीधा गुरु नाल संबंध बनाना। ऐसा श्रृंगार बनाए तू, कैसा श्रृंगार बनाए तू, सतगुर अपना मनाए लै, ये श्रृंगार है। जिवें सात संगत जी दरियावी तौर दे उत्ते केसां विच कंघी करनी, दंदां ते दंदासा करना, इसे प्रकार सुंदर वस्त्र पाने, सोलह प्रधान श्रृंगार मन्ने गए ने गुरमुखो। काजल हार श्रृंगार सभै किछ साजिया, सोलह किए श्रृंगार के अंजन पाजिया, जे घर आवे कंत ता सब किछ पाइए, हरिया कंत बाज श्रृंगार सब बिरथा जाइए। पर वो श्रृंगार करना किवें है गुरु?

दिन रात, दिन रात उहदे विच तेरा प्यार बणिया रहे लगातार। ऐनिस लागे पाओ नानक, गुरु अमरदास जी का फरमान, सुहागण का क्या चेन है। मेरी गल बन गई है कि अजे नहीं बनी, जां जिहड़ा गुरसिख मेरे सामने है इहदी गल बन गई है कि अजे नहीं बनी। जे तू वेखना होवे ते पैरामीटर की है। हजूर कहन लगे अंदर सच, पहली गल मुख उजला, ते तीजी गल खसमै माहे समाए। उदे अंदर सदा थिर अकाल पुरख दा नाम टिक जांदा है। ए नहीं भई आर पार करदा है ते फिर जपिया जांदा है, नहीं वो आटोमैटिक ही हो गया। कम करदिया, बहिंदिया, उठदिया, सौंदिया, जागदिया मूँह चो वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू मिठा मिठा मिठा मिठा निकलदा ही रहिंदा है। इहदा मतलब हुण सच अंदर टिक गया। भई कदी कदाई चलो वाहिगुरू वाहिगुरू कर लिया, कदी चेता भुल गया ते सुरत होर पासे चली गई। यह है अंदर सच। अंदर सदा थिर अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम है। जदों अंदर नाम होवेगा चेहरे ते रौनक बनी रहेगी। असी ना साध संगत किसी के दर्शन करके कह दें भी गुरमुखो अज बड़े प्रसन्न हो। कदी कदी असी चेहरा वेख के कह दें गुरमुखो की गल अज चेहरा बड़ा रौनक रहत है। उन्हों का चेहरा रौनक रहत नहीं होंगे, हर वेले खिड़िया रहिंदा। क्यों? क्योंकि अंदर सच है। जे पिछों लाइट आ रही है तो बल्ब तो चमकेगा ना। जे अंदर नाम टिक गया है तो फिर चेहरा जिहड़ा है उहदे उत्ते जिहड़ा जलवा है वह वक्खरा होगा। वह हर वक्त परमात्मा विच समाए रहिंदे ने। महला तीजा सानू समझाने लई गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ने, पर कदी कदी की हुंदा है बाहरों लिबास हुंदा है अंदरों बात नहीं बनती।

श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे साहू, जिस पास बैठे आ सो ही आए, सबनां दा वे साहू। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे साहू, जिस पास बैठिया सोही आए, सबना दा वे साहू। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला नावा। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्मे अकारथ कीना, कहो नानक हर भज मना, जे बिद जल को मीना। बिखिया न स्यों काहे रचियो, निमख न होहे उदास, कहो नानक भज हर मना, परे न जम की फास। तरण आपो इउ ही गयो, लियो जरा तन जीत, कहो नानक भज हर मना, औध जात है बीत। बिरद पयो सूजै नहीं, काल पहुँचियो आन, कहो नानक नर बावरे, क्यों न भजै भगवान। तन दादा संपत सगल, जिन अपनी कर मान, इन मैं कछ संगी नहीं, नानक साची जान। पतते उदारन पैहरन, हर अनाथ के नाथ, कहो नानक तह जानिय, सदा बस्त तुम साथ। तन तन जय तौ कौ दियो, तासे उन्हें हो न कीना, कहो

कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे ना राम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहे न कोय, कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होय। जय सिमरत गत पाई तेह बजरे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना औद घटत है नीत। पांच तत् को तन रचियो जानो चतुर सुजान, जेते उपजियो नानका लीन ताहे मेहमान। घट घट में हर जू बस संतन कहो पुकार, कहो नानक तह भज मना पवन दे उतरे पार। सुख दुख दा सुख दुख जय परसै नहीं लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। उस्तत निंदिया नाहे जे कंचन लो समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तह जान। हरख सोगा जानके नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तह जान। हरख सोग जानके नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना

मनाउ ज्ञानी ताहे बखानाउ जय बिखया सगली तजी लियो पेख बैराग कहो नानक सुन रे मना ते नर माथे भाग जय माया ममता तजी सब ते पयो उदास कहो नानक सुन रे मना ते कट ब्रह्म निवास जय प्राणी हो मैं तजी करता राम पछाण कहो नानक वह मुगत नार ए मन साची मान पहे नासन दुर्मत हरण कल मैं हर को नाम निस दिन जो नानक पजै सफल होहे ते काम जे बागुण गोबिंद पजो करण सुनो हर नाम कहो नानक सुन रे मना परे न जम कै धाम जो प्राणी ममता तजै लोभ मोहंकार कहो नानक आपन तरै और न लेती उधार ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान इन मैं कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत होटन।

कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद जो सुख को चाहे सदा सरन राम की ले कहो नानक सुन रे मनाओ दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूर्ख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तेह जान हर जन

औरे पई चितवत रहोठ गौर नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोय कहो नानक सुन रे मनाऊ।

राम। जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरते पूरन होवे काम, झूठे मान कहाँ करें जग सुपन।

कहु नानक थिर कछ नही सुपने ज्यों संसार। चिंता तांकी की जिय है जो अनहोनी होय, एहु मार्ग संसार को

जय सिमरत संकट मिट दर्श तुहारो होए। मुदावणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो। जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए आधारो। ए वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसा।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग आलापे अठो नंदन प्रथम राग भैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बुलावली पुन्या की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पांचो नारी पंचम अर्ख दुस्वाख सुनावी बंगालम मद माद बगावे ललत बलावल गावही अपनी अपनी भांत वैष्ठ पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया मालक सक्या लापे संग रागनी पंचो थापे गोंड करियर देव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी तनाश्री ए पांचो गाई माल राग कौ सक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड को सक्यो बारा खौ खट्यो पौरानंद गाए अष्टमाल कौ सक संग लाए पुन्य आयो हिंडोल पंच नार संग ऐठ सोत उठे तान कलोल गायन तार मिलावही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरसिहरी लै भार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बेमंगलन सुहाए सरस बाने वाहे बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कह सुवारी पुन्य आई दीपक की बारी कछली पट मंजरी टोडी कही आलाप कामोंदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सामल श्री राघव गावे पंचो संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे असावरी तै पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यों पंचो थापी सालू सार्ग सागरा और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर कष्ट मेघ राग वै गावे पंचो संग बरंगन लावे सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुण गुणी उचे सुर सुह पुन किनी मेघ राग स्यों पांचो चीनी बैरा धर गज धर केदार जबली धर नट जल धारा

रसना गुण गोपाल निद गायन सात सहज रहस मन उपजियो सगले दुख पलायन रहाउ जो मांगे सोई सोई पावे सेव हर के चर